0: के होते, तो 1900 जो 1.5 किलो जो है, अगर आप 30 दिन का भी करें तो कितने बनते हैं, 45 किलो एक बोरी आती है चावलों की, आप वो भी लेके आप दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर जैसे मुयसर हो, अगर आप चाहें तो 30 मिसकिनों को खाना खिला दें, जैसे कि सदर अनस का अमल है, इस तरीके से किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। पैसा नहीं, पैसे नहीं, आपने इताम है, खाना खिलाना है आपने।
1: पहले रोजे को पूरा 30 दिन के लिए
0: पहले रोज़े से आप करें, रमज़ान के बाद बेहतर है पहले कर लें,
1: पहले कर दो,
0: बेहतर है, क्योंकि आपने जो फ़र्ज़ था, आपने फ़र्ज़ तो आप पर आज गए, कल तो आपने देखा नहीं है, लेकिन अगर पहले आपने कर दी है तो आप बाकी आपका सारा सदका हो गया। किसी को वफात हो गई, उसने पहले 30 मिनट को खाना खिला दिया है, 2-3 रमज़ान में उसकी वफात हो गई, तो बाकी क्या उसका सदका है कि नहीं, सुभान अल्लाह, तो कोई हर्ज नहीं है,
1: एक मिस्किन को भी 30 दिन के लिए खाना भी
0: दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगला सवाल, क्या वितर में दुआ देख कर कर सकते हैं, और क्या औरत वितर की जमात से नमाज पढ़ा सकती है? वितर की नमाज में जो दुआ है आप उसको याद कर लें, ज़्यादा लंबी नहीं है, और अगर आपको दुआ याद नहीं तो आप कोई भी दुआ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, और अगर देख भी पढ़ना चाहें उसमें कोई हर्ज नहीं, देख के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इमाम के साथ हैं, जैसे रमज़ान में हम पढ़ते हैं, तब तो आप ना देखें ना कुछ करें, इमाम के साथ आप आमीन कहते रहें। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं और आपको दुआ याद नहीं मुश्किल याद करना, तो आप देख के पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है याद करने के लिए। और क्या औरत वितर की जमात से नमाज़ पढ़ा सकती है? औरत अगर, इसमें दो शर्त, एक मामूल ना बनाए, क्योंकि औरत बा जमात नमाज़ नहीं पढ़ती, अगर कभी पढ़ानी हो तो पढ़ लें, और अगर बाज़ औक़ात सलातुल लेल जैसे है, या ऐसे नमाज़ पढ़ी है कि जमात हो गई है, औरतों ने आपस में जमात की है, क्योंकि औरत की इमामत कर सकती, मर्द की नहीं कर सकती, शरान जायज़ नहीं है। बाज़ अक़वाल हैं, शाज़ कौल है और ग़लत अक़वाल हैं जिन्होंने इसको जायज़ करार दिया है, शरान औरत मर्द की इमामत नहीं करती, हाँ औरतों की कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जब वो इशा की नमाज़ पढ़ ले जमात, तो औरत जो है वो फितर की भी पढ़ा सकती है, कोई हर्ज नहीं, इंशाल्लाह। आगे नहीं खड़ी हो सकती, ज़ाहिर उसका अपने जो साथ खड़ी होगी, उसकी जो तरीका है वो शरान उस तरीके से। एक शख्स जो सहरी खाता है फिर दिन में जानबूझकर रोज़ा तोड़ देता है, दूसरा शख्स जो सहरी के लिए उठा ही नहीं और रोज़ा भी नहीं रखता, क्या इन दोनों के कफ़ारे में कोई फ़र्क है? याद रखें, दोनों बहुत बड़ी गलती पर हैं, और जिसने तो जानबूझ के रोज़ा रखा ही नहीं है तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। यानी बाज़ उलमा कुफ्र तक भी फतवा लगाते हैं, लेकिन जो कुर्राजी है वो तारिकु सलाह जो है तहाउनन, उस पर तो दलील है कुफर की, लेकिन जो बाकी अरकान इस्लाम हैं, यानी कलमा शहादत के अलावा जो बाकी 3 हैं, रोज़ा है, ज़कात है और हज है नमाज के अलावा, तो उलमा फरमाते हैं कि इसमें अगर कोई शख्स तहाउनन छोड़ देता है, यानी सुस्ती काहली की वजह से नहीं रखता है बग़ैर उज़्र शरई के, तो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब ज़रूर, लेकिन काफिर नहीं है, इल्ला यह कि उसकी फ़र्जियत को और वजूब का इनकार कर दे कि रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, ऐसा शख्स रोज़ा रखता भी है तब भी काफिर है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई सुस्ती काहली की वजह से रोज़ा छोड़ देता है तो बहुत ही बड़े कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। दूसरा शख्स जिसने रोज़ा रखा है लेकिन उसने बग़ैर उज़्र के तोड़ दिया है, अगर उसने मजाक उड़ाया है तो कुफ्र का फतवा लगता है इस पर, अगर उसने वैसे मजाक नहीं उड़ाया लेकिन उसको बग़ैर उज़्र शरई के उसने रोज़ा तोड़ दिया, तो ऐसा शख्स भी गुनहगार है, और इनका कफ़ारा क्या है? तौबा है, और बाज़ उलमा कहते हैं कवा उस पर वाजिब है, कवा कर लेगा बाद में, बाज़ उलमा कहते हैं कि इस कवा भी नहीं कि उसने जानबूझ के बग़ैर उज़्र शरई के छोड़ा है जिसने रोज़ा रखा ही नहीं है, लेकिन शब बाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं उनका एक फतवा है कि क़ज़ा भी उस पर वाजिब हो जाती है, तौबा करे, सच्चे तौबा करे, तौबतुल नसूह, और बाद में क़ज़ा कर ले, वल्लाहु अलम। रमज़ान में हर दिन कुछ रुपये वालिद की तरफ से सदका करने का फ़ैसला किया है, ज़्यादा सवाब दिन में सदका करने से मिलेगा या रात में भी कर सकते हैं? सदका जिस वक्त भी करें, माशाल्लाह शायद भाई बहुत हरीस है माशाल्लाह, बेटा जो है अपने वालिद की तरफ से सदका कर सकता है, सदका जारिया वालिदुन सालिह की जो हदीस आई है कि जब इंसान मर जाए तो उस काम में मुक़त्तई हो जाते सिवाय 3 चीज़ों के,